अजुद के रंग तन के नाम अनेकानंता करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तुथा सुहिन बन ब्रह्मान नदरी करम पबै निशान कट पकाई उथै पाए नान गया जप जाए धर्म खंड काय धर्म ज्ञान खंड काय आखो कर्म केते पौन पाणी।

करुणाली है, अरकाली है, कल खंदन है, मैं बंदन है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व बारण है, त्रित के तरण है, जग की करण है, मनमानिए है, जग जानिए है, सर्वंबर है, सर्वंकर है, सर्वासी है, सर्वनाशीय है, करुणाकार है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, ब्रह्मंड।

त्रेतः अमित बेसुर परमेश्वर कृता कृत अमृतामृत अजबा कृत अमृतामृत निर्नायक खलकायक विश्वंबर करुणालय है दृपनायक सर्वायक पापंजन रगंजन है

0: सिमरे से सुखवासी
1: प्रभु को सिमरे सदा अवनासी
0: सिमरते लागे जन आप दयाला
1: नानक जन की मंगेर वाला
0: प्रभु को सिमरे से

0: जन हर रस राते
1: सुन समाध नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपै
1: हर का भगत पर नहीं छपै
0: हर की भगत।

0: सो अविनाचित
1: जो वैराइता से उपरीत
0: के ग्रह पितर वसे
1: अंध केल माया रंग रस
0: कर्माने मने प्रतीत
1: काल न आवे मुड़े चीत
0: काम क्रोध तो
2: झूठ विकार महालोभ त्रोह
0: जाने कई जानम
1: नानक राख लियो अपन कर कर्म

0: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
0: जय प्रसाद परम गत पाव है,
1: जय प्रसाद सुसायत समाव है,
0: प्रभु त्याग अवर कत लागो,
1: वर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जय

0: सगली खोत,
1: साध के संग मिटे विमान,
0: साध के संग कटे सो ज्ञान,
1: साध के संग

0: प्रगास
1: जैसे तरु प्रकाश
0: ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नानी अभिमान
0: ज्ञानी ऊचते ऊंचा
1: मन अपने है सबते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
1: नानक जिन प्रभाप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना
1: पात रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ पुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वासी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

0: जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म

0: संत भगत का रंग
1: संगत आगे दुष्ट का संग
0: ते विनसे सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: संग पाप मल खोवे
1: तिस भगवती की मति उत्तम होवे।

0: संत के दुखन आरजा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के

जाना नाम संग जिसका मन मानिया गुर प्रसाद अपन आप सूजे साध संग हर हर जस कहत अन दिन कीर्तन केवल बख्या।

0: पुरख परताप
1: आप जयनान जयाव
0: जिन प्रभु जाता सो शोभावंत
1: संसार उपरे तिन मंत
0: प्रगटे सेवक सगल उदारन
1: प्रगटे सेवक दुख विसारन
0: आपे मेल रहे कृपाल
1: गुरका शब्द कहे निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे
1: जिसनो कृपा करे बड़ पागे
0: नाम जप पावे विश्राम
1: नानक जिन पुरख उत्तम कर मान
0: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: सहज सवाए होवे सो होए
1: काने हार पिछाने सोए
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जिस ते उपजे तिस माहे समाए
1: ओए सो

0: हार,
1: नाम सत सत हरन हार,
0: आप सत सत सब तारी,
1: आपे गुण आपे गुणकारी,
0: शब्द सत सत प्रभु भक्ता,
1: सुरत सत सत जस सुनता,
0: जन हार को सत सब होए,
1: नानक सत सत प्रभु सोए,
0: सत स्वरूप हृदय जिन मानिया,
1: कान

0: अपने सेवक की सर पर रखे,
1: अपने दास को देव बढ़ाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आप पत रखे,
0: ताकि गर्मित कोई न लागे,
1: के सेवक को कोना पहुँचे,
0: प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे,
1: प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया,
1: नेकी कीरी मैं कल राखे,
0: असुर करे लश्कर को लाके,
1: जिसका सास न काटते आप,
0: नाको राख दे कर हाथ,
1: मानस जतन करत बो पात,
0: जिसके करता बिनते जात,
1: मारी न राखे अवर न कोई,
0: सर जिया का राखा सोए,
1: नहीं सोच करे रे प्राणी,
0: जप नानक प्रभु रखणाई,
1: बारंबार वार प्रभु जपिए,
0: पी अमृत मंत्र त्रपिए,
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया,
0: इसके शवर नहीं दृष्टाया,
1: नाम धन नामो रूप रंग,
0: नामो सुख नाम का संग,
1: नाम रस जो जन तृप्ताने,
0: मंत्र नामे नाम समाने,
1: उठत बैठत सोबत नाम,
0: को नानक जन के सदकाम,
1: बोलो जस जे बा दिन रात,
0: प्रभु अपने जन की नींदात,
1: हरि भगता तुम कह चाहे,
0: प्रभु अपने सोरे आसमाए,
1: जो खोआ खोबत सो जाने,
0: प्रभु अपने का हुक्म पछाने,
1: जिसकी महिमा कौन बखानो,
0: जिसका गुण कै एक न जानो,
1: आठ पहर प्रभु बसे हजूरे,
0: को नानक सही जन पूरे,
1: मन मेरे तिन की ओट लिहे,
0: मन तन अपना तिन जन दे,
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता,
0: सो जन सर्व तो का दाता।

0: गुर का मन माने,
1: सो सेवक परमेश्वर की गति जाने,
0: सो सतगुर जिस दे हर नाओ,
1: अनेक बार गुर को बल जाओ,
0: सर्व इन दान जी का दाता,
1: आठ पैर पार ब्रह्म रंधराता,
0: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म,
1: एक आप नहीं कछ परम,
0: सहज सियान पलया न जाइए,
1: नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइए,
0: सफल दर्शन पेखत पुनीत,
1: पार्षद चंद्र निर्मल रीत,
0: पेट संग राम गुण रवे,
1: पार ब्रह्म की दरगह गवे,
0: सुनकर वचन कर्ण आघाने,
1: मन संतोखा तंप ज्ञाने,
0: पूरा गुर अखियो जाका मंत्र,
1: अमर दृष्टि के होय संत,
0: गुर पे अंत की मत नहीं पाए।

0: सांचो हो वो भगवंत
1: संत जनाका निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार कुंड

0: परख पत होता,
1: तै बिन मैं कहो क्या तोता।
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण,
1: तै कौन कुमान कौन अभिमान।
0: जय स्वरूप केवल जगदीश, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे। कर्ण करावन करन हार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई।
1: तब कवन माए वाक मित्र सुत पाई।
0: जय सर्व कला आपे।

0: सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सब बचन
1: सर्वव्यापी राम संग रचन
0: जाता तिसकी यह रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो होए सोई सुख मान।

0: कर तू ततने की
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साच तारी सब साच
1: पोत पोतापन संग्राच
0: लाकी कत में तक ही न जाए
1: दूसर होए तसो जी पाए
0: इसका किया सब परवान

0: सा दया प्रवतारी
1: नानक ने वेखे पहमारी
0: प्रभु की उसत करो संत मीत
1: साथ गाने का घर चीत
0: मनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो धन्य
0: सर्विच